नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए। जदो सिख राज दा पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी कीता उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाम ते ए सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का जिदे बोलां दा ए मतलब है सिक्का जद हर दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू। नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। फजले कहंदे ने मेहर किरपा। इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है। गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का चालू होया।

प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया मैं गोविंद सिंह हां बैरागी ने फटियां फटियां अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदियां प्यास नहीं सी लेंदी उसदा शरीर कंब रिहा सी फुल

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जिथे

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तो दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़के पसम हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उस वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसण लग पए जिउं प्रचंड महातांडव नचदी होई परलोह आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटां विचों

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमा नू सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचे। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया। वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले उन्हां जिउंदिआं नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया। अखां गुस्से नाल लाल हो गईआं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिआं होया आखिया, इहो ही उह सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिआ गया। बचाना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दियो। नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे। हल चला दियो, इस शहर नू मिट्टी च मिला दियो। देखदियां देखदियां बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरा नाल अहलकारा नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदियां देखदियां शहर साड़ के सुआह कर दिता। किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वह भी मारिया गया। उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दित्ती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ये तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त। ये सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

आप तो डर लगता है फिर। मेरा रूप बिगड़िया हो भयानक है, मुबारक है जदों बंदे नूं अपने आप कोलों डर लगन लग पवे ना। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਮਝੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਜ਼ਰ ਪਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਭਾਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਲਕ ਪਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਮਾਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ, ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਸੀ ਕੌਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਭਿਅ ਲੋਕ, ਸਭਿਅਤਾ ਰਹਿਤ ਸਭਿਅਤਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਏ ਬੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਫਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦਾ ਛੁਰਾ ਮੈਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਖੋਰਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
मैं पत की पंध मैनू अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं ना करनी की कार मेरे अंदर आचरण की रहनी की कोई लकीर नहीं कोई हद नहीं तेरा एक नाम तारे संसार एक आसरा है कि इस भयानकता तो अपने आप तो लगते डर वाली अवस्था तो इस संसार तो तेरा नाम मैनू बचा सकता ऐसे आसरे मैं एहा आस एहो आधार आस ला के बैठा एक नाम दे आसरे शायद मेरा जीवन बदल जा मुख निंदा आखा दिन रात मैं लोगों के औगण कढ़ के यह सच करके जानना जिन्ना चिर बंदा दूजिया के औगण कढ़ता रहे अपने औगणा ते निगाह ही नहीं पे ते जिन्ना चिर अपने औगणा ते निगाह ना पवे बंदा ठीक किवें होवेगा। धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह के पावन दरबार च आप जानते हो साहबां दे पास बहुत वड्डा चिकित्सालय सी दवाखाना सी लगभग उस वेले पसरिया मोटिया मोटिया सब बीमारियों का इलाज महाराज सच्चे पातशाह की निगरानी हेठ होया करदा सी बड़े बड़े तकड़े सियाने हकीम वैद महाराज ने सेवा च लाए हुए सन ते हर तरह की जड़ी बूटी दवाई जो उस वेले मिल सकन वाली चीज सी वरती जा सकन वाली चीज सी महाराज ने अपने दवाखाने कच कीती सी। इथों तक भी दस्या गया है एक बार दिल्ली दरबार विच भी एक बहुत वड्डे आकार की हरण की लोड़ पै गई सी हकीमां ने कह दिता ते महाराज के दवाखाने बिना होर किधरों नहीं सी मिलना। वह एक प्रेमी का मंजा चुक के लियाए घर दे बंदे लिया के वह मंजा रखिया वह कहिंदा मैनू महाराज को लै चलो मरीज जो है रोगी कहिंदा मैनू महाराज के बूहे ते लै चलो वह कह लगे तैनू दवाखाने विच हकीमां ते वैदां दे हवाले करना है महाराज के दर्शन तू तगड़ा होके कर ली महाराज इत्थे भी आउंदे ने दर्शन बख्शदे ने सतगुरु पातशाह उन्हां रोगियां नू आके नाम जपण निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश भी नाल नाल देंदे रहिंदे सी दवा दारू भी चलदा रहे कहिंदा नहीं मैनू हुणे लै चलो महाराज एक बारी मैनू वेख लैण सियाणियां ने बहुत किया तैनू वैदां ने वेखना हकीमां ने वेखना महाराज दे दर्शन करने ने नहीं महाराज मैनू वेखण जिद कर बैठा रोगी की जिद बड़ी हुंदी उन्हें क्या चलो कोई नहीं लै चलो मंजा चुके महाराज के बूहे ते लै आए दरबार ने कहा सतगुरु आराम फरमा रहे ने विश्राम कर रहे ने हालांकि सतगुरु ने कहा विश्राम करना उन्होंने विश्राम विच भी भगती ते समाधि है उन्होंने इकले हो जाने विच भी समाधि है जपन है सिमरन है पर उपकार की भावना के कुछ व्यवंता होनगियां पर नहीं उसने क्या विश्राम कर रहे ने यह कह लगा मैनू इत्थे प्यार रहन दिओ जिस वेले वो बाहर निकलणगे मैनू एक बार वेख लैण फिर मेरा दवा दारू शुरू करे आवाज अंदर भी पहुंच गई महाराज ने पूछया क्यों बई की गल है दरबार ने दस्या महाराज रोगी आया वह कहिंदा पहला महाराज मैनू वेखण फिर मेरा इलाज शुरू करो महाराज पातशाह आप बाहर आ गए धन गुरु हर राय साहब बाहर आ गए जिस वेले साहिबां दे दर्शन होए वह जिहड़ा पासा नहीं सी लै सकदा ना प्या प्या सज्जा खब्बा पासा नहीं सी मोड़ सकदा सारा शरीर गलिया पिया सी वैदा हकीमां ने जिसके बारे जवाब दे दिता होया सी महाराज नूं वेखदिया सार छेती नाल उठण दा जतन करन लगा साथियां ने क्या प्यार हो महाराज ने भी इशारा कीता मगर उठ के बैठ गया मंजे ते उठ के थले उतरन लगा महाराज कहन लगे टिक जा की चाहुंदा है कि कहिंदा बस महाराज मैं ही चाहुंदा सां तुसीं मैनूं वेख लो साहिबां ने मुस्कुरा के उही गल कही भलिया लोका तैनू वेखणगे वैद हकीम दवाई देणगे तू ठीक हो जाएगा आ गए तो हुण तैनू ठीक करके तोरांगे साडे वेखण वाली कहड़ी गल है सिर नीवा करके कहण लगा महाराज वह मैनू बाहरों वेखणगे मलमा ला के ठीक करके तोर देणगे मेरे अंदर किन्ना कोड़ वरतिया जिहड़ा फुट के बाहर आ गया तां तुहानू ही दिसणा वैदा हकीमां नूं कोई नहीं दिसणा किस काम क्रोध ते गंध ने मेरे अंदरों मैनू रोगी कीता ते ओह रोग मेरे बाहर चमड़ी ते आ गए ने वह जिहड़े मेरे अंदर दे रोग ने वह वैदा ते हकीमां नूं नजर नहीं आउंदे साहब जी वह तां तुसीं देख सकदे हो इस करके क्या पहला मैनू अंदरों ठीक करना शुरू करो बाहरों ठीक हो जावांगा ते ठीक है पर जे मैं अंदरों रोगी रह गया ते गल की साहब हस पए कह लगे शाबाश जे तेरा अंदर ख्याल भी पै गया ना कि अंदर कुछ रोग है अंदर कुछ बुराई है अंदर कुछ खराबी है तो हुण तेरे ठीक होने के दिन आ गए यह सच करके जानना जिस वेले मनुख का अपने आप ते ध्यान ही पै जावे ना कि मेरे अंदर कुछ खराबी है धन गुरु नानक कहिंदे ने मैनू इज्जत का कोई ख्याल नहीं मैनू अपनी करनी का कोई ख्याल नहीं मैं पत की पंध ना करनी की कार हो बिगड़े रूप रहा बिकरार बिगड़िया होया मेरा अंदर का रूप भयानक रूप
तेरा एक नाम तारे संसार मैं यह आश एहो आधार मुख निंदा आखा दिन रात इस मूह नाल मैं लोकां दी निंदिया करदियां जिंदगी बिता रहा दिन रात लोकां दी बुराइयां कढ़ियां पर घर जो ही नीच सनात मैं बड़ा नीच ते कमीना हां कि मैं लोकां दे घरां विच वेखना ध्यान देना लोकां दे घरां वल वेखना आम तौर ते बाणी विच इस सेंस च लिया गया है इस भाव च लिया गया है जेड़ा कोई स्त्री किसी दे मर्द वल वेखे या कोई मर्द किसी दी स्त्री वल वेखे लेकिन केवल शरीरां तक दी गल नहीं है एक कामी पुरुष अपने घर वल ना वेखदा होया किसी दी इज्जत वल वेखदा है बहुत माड़ी गल एक स्त्री अपने पति दी धर्म पत्नी ना रह के ईमानदार ना रह के किसी मर्द वल मैली निगाह नाल वेखे इस नूं पर घर जोना कहिंदे ने पराए घर वल वेखना लेकिन साडे लोकां दी निगाह इत्थे ही थोड़ा टिकी असीं धन भी लोकां दे घरां दा वेखने आ वड़ियाईयां भी लोकां दे घरां दीआं वेखने आ जो कुछ किसे दे घर च नजर आउंदा है उत्थे ही साडी लोभ दी निगाह टिकी हर चीज ते साडी निगाह मैली हुंदी चली जांदी साहिब कहिंदे ने इस तरह मेरी निगाह लोकां दे घरां विच पै रही पर घर जो ही देखदा हां लोकां दे घरां विच वेखदा हां बड़ा नीच ते कमीना पण है काम क्रोध तन वसे चंडाल ये तुसी भी जानते हो कि आम तौर दे बंदा कातल ते खूनी उदों बनता है जदों ये लोभ दे वस होवे काम दे वस होवे क्रोध दे वस होवे ये खराबियां बंदे कोलों बहुत गुनाह कराउंदियां ने साहिब कहिंदे ने इन्हां चंडालां ने मेरे कोलों बड़ा नुकसान कराया अपना भी पराया भी इन्हां चंडालां ने मैनू नेक इंसान नहीं बन दिता नहीं रहन दिता तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेस कई बार ऐसा भी होया कि वह तो लोग जिन्हों की गल महाराज ने जिक्र किया इतने वो लोग तो बाहरों भी गंदे रहते सफाई बाहरले जीवन की भी नहीं रखते बाहरों भी मर्यादा नहीं रखते पर कई बार ऐसा भी होया कि आम बंदियां ने बाहरों जे बहुत सोहना साधा वाला वेस धारण बना लिया संतां वाला वेस धारण कर लिया साहब कहिंदे ने ऐसा भी होया फाही सुरत दिमाग में आया है कि मैं लोगों को फसावा किस तरह लोग फसन किस तरह मेरी फाही विच किवें आउण मैं लोगों को किस तरह अपने चुंगल च लै सकां मलूकी वेस बाहरों मेरा नेक इंसाना वाला साधा वाला फकीर वाला वेस है हौ ठगवाड़ा ठगी देस मैं ठग लोगों को ठगण ते लगा होया खरा सियाणा बहुता भार उंज तां लोकी मैनूं सियाणा समझदे ने मैं अपने आप च सियाणा बणदा वी बहुत हां मगर ठगी ते पाप दा भार मैं अपने सिर ते वधाई चलिया जा रहा तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर मालक तेरियां रहमतां ते बख्शिशां दा मैं शाकर ना होया शुकराना ना कीता किरत कण बन गया जेड़ा बंदा किसे दा लै के किसे दा खा के फिर उहदा वी बुरा चितवे उस नूं हराम खोर कह देने आ खा के हराम करन वाला या बिना कीते खान वाला बिना कुछ कीतियां दे खा के डकार मार जान वाला बंदा उसनू हराम खोर कहिंदे जेड़ा हलाल नहीं करता खादे होए जो कुछ उसनू प्राप्त है उहदा हक अदा नहीं करता साहिब कहिंदे ने मैं तेरियां दातां दा शुकराना ना कर सकिया ना मैथों कुछ घाल होई ते ना मैं तेरियां बख्शिशां दा शुकराना कर सकिया बल्कि तैथों बेमुख होया रहा इस तों वड्डा हराम खोर होर की होवे मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर मैं तेरे बूहे ते तेरे दर ते उते आके की मुंह विखावांगा मेरे अंदर किन्नी दुष्टताई ते किन्ना चोरां वाली गंदी बिरती है मेरे अंदर पल रही नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार मैं निमाना मैं नीच एक विचार दे रहा हां कि मैं चंगे रूप च नहीं रह रहा मैं कोई चंगा जीवन बतीत नहीं कर रहा धन गुरु नानक का यह शब्द साहबां दी यह बाणी सानू अपने अंदर झात पाउण वास्ते एक बहुत प्यारी रोशनी है ते मनुख नूं जे अपने अंदर यह रोशनी मार के अपने

कोई रोक नहीं सकता। जिन्हां ते माण करदा है भरा भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र एथों तक के सब तो नजदीकी रिश्ता है इस्त्री दा, वो भी साथ छड़ जांदी है। सारे कट्ठे होके फिर बेबान दे उत्ते रख के बन के इसनू चार बंदे अपने मोढ़ियां ते चुक के तुर पैंदे ने। जेड़े इसनू मेरा मेरा करदे सन ओही हुण इसनू अगन भेट करन वास्ते ओही इसदा अंतम संस्कार करन वास्ते तुर पैंदे ने। ऐसी है ये दुनिया, ऐसा है ये संसार। हजूर गुरबाणी भी सानू उपदेश फरमान करदे ने।

एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेडन वास्ते जा रहे सन। रस्ते विच कलयुग मिलिया। राजे परीक्षित ने आख्या, तेरा मेरे राज विच कोई कम नहीं। ते कलयुग कहन लगा, महाराज हुण मेरा पहरा आउण वाला है। तुहाडे तेज प्रताप अगे मैं ठहर नहीं सकदा, पर मैनू स्थान जरूर दिओ। कहिंदे ने राजा ने आख्या कि तू या ते सोने विच वास कर जिथे धन दौलत होवे, जां फिर जिथे पाप कर्म होण उत्थे तेरा वास है। इन्नी कहण दी देर सी कलयुग कहिंदे ने अलोप हो गया। राजे दे मुकुट दे विच सोना लग्या सी, उहदे विच वस गया। ज्यों सिर ते आके बैठिया, मत बुद्धि भ्रिष्ट हो गई। तुरे जा रहे सन, रस्ते विच की वेख्या, एक ऋषि तप कर रहे ने। राजे ने सोचिया मैनू नमस्कार करेगा, पर जदों ऋषि ने ना नमस्कार कीती, क्योंकि ओह ते समाधि विच बैठे हुए सन, गुस्सा आ गया। कहण लगे, मेरे राज विच एक ए फकीर, मैनू इहने उठ के नमस्कार नहीं कीती, इहनू मैं इस गल दा मजा चखावांगा। कहिंदे ने एक मोया होया सप पिया सी, अपने धनुष नाल चुकिया ते ओह मोया होया सप उस ऋषि दी गल दे आले दुआले लपेट दिता, उसी गर्दन विच पा दिता कि जदों इहदियां अखां खुलणगियां डरेगा। वापस आ गया अपने राजमहल विच। उधर ऋषि दे पुत्तर नूं जदों इस गल दा पता लगा कि राजा ने तेरे प्यो नाल मजाक कीती है, आया उहने आके अपने प्यो दे गल विचों ओह सप लाया, नाल ही उहने श्राप दिता कि राजे नूं इतना माण अहंकार हो गया, अज तों सतवें दिन राजा सप दे डंगण नाल ही मरेगा, श्राप हो गया। इधर जदों राजमहल दे विच राजा आया, मुकुट ला के रखिया, एकदम बुद्धि फिर स्वच्छ निर्मल होई। पश्चाताप कीता कि ऐ राजन, तू ते अज बहुत ही घोर पाप कर बैठे, पर हुण की बनदा है। अखीर ए भी गल पता लगी कि सप दे डंगण नाल तेरी मृत्यु होनी है। कहिंदे ने साधु दा बचन कदे खाली नहीं जांदा। इहने अपने राज पुरोहित सदे, बड़े बड़े ऋषि तपीश्वर सदे कि किवें इस मौत तों बचिया जाए, सप ना आवे। किसे ने कुछ दस्या, किसे ने कुछ दस्या, अखीर कुछ मंत्रियां दी सलाह होई कि सप नहीं आएगा, जे सप ना आया ते मौत नहीं हो सकती, पानी दे विच घर बनाया जावे, क्योंकि जहरीला नाग जिहड़ा है पानी दे विच नहीं जांदा, ते जे किधरे पानी चलिया भी जाए तां शीशे दे उत्ते सप नहीं तुर सकदा। इस करके शीशे दा एक महल बनाया जावे। राजा शीश महल दे विच बैठे, जदों उह समां लंघ जाएगा राजा बच जाएगा, इहदी मौत नहीं होवेगी। इसे तरह कीता गया, दरिया दे विच शीशे दा एक घर बनाया गया। राजा उहदे विच बैठिया अपना सिंघासन ला के। निर्धारित समय ते जदों उह समां पुज्जा, आ के चारे पासे पहरेदार लगा दिते, कोई भी परिंदा तक इत्थे ना आ सके। लेकिन की होया, रोज जिहड़ी मालण आउंदी सी फुल्लां दा हार लै के, गुलदस्ता लै के राजे नूं भेट करन वास्ते, उहनूं पता लगा ते इसे पासे आ गई। पहरेदारां ने सोचिया, इह स्वागत विच लियाई है, रोज ही लियाउंदी है फुल ते गुलदस्ते, उहनूं जाण दित्ता। इह मालण जदों राजे दे कदमां विच इहने जा के फुल्लां दा गुलदस्ता भेट कीता, गल विच पाया ओह फुल्लां दा हार, बड़ी बेहतरीन खुशबू इस नूं आई। फुल्लां दा जिहड़ा गुलदस्ता सी हथ विच लै लिया। इसने कहण लगा, मालण अज ते इहदे विच तूं बहुत ही खूबसूरत फुल गुंद के लियाई है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। ओह खुशबू नूं लैण वास्ते कहिंदे ने, ज्यों ही नक नाल इहने
ਗੁਲਦਸਤਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਿਛਕ ਨਾਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਡੰਗ ਉਸਨੇ, ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

विस्तारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

शाह साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे, शीश बंदे कर बैसन दीजे।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पे मांगू, देवो अपना नाम, मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहे आ बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

आप संगत में बैठे हैं, यहां का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम थी अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर गावे। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ओछे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता किसी किसी को है,

चरण आया है उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं। ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं। ये सब तेरी कृपा है ए तेरी मेहर है तू ता मैनू एनिया बख्शिशा कीतिया हन एनिया रहमता कीतिया हन पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ। चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है। ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्य फिर अपने आप रास हुंदे हन। ए सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना इस वास्ते इन्हां दी आत्मावां नूं तसीहे दित्ते जा रहे। तां राजे जनक ने उत्थे एक घड़ी बह के सत्संग कीता और नरकां दे जीआं नूं मुक्त कराया। ताई आख्या तन तन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। एक घड़ी दे सिमरन दे नाल जो राजे जनक ने मन करके उत्थे कीता प्रभु दे चरणां नाल जुड़ के आख्या नरकां दे नरक खाली हो गए उस जपन वाले दी सदके। क्योंकि जिस वेले नाम नूं एक पलड़े विच रखिया धर्मराज ने सत्संग दी एक कड़ी नूं एक पलड़े विच रखिया ते नरकां दे पापियां दे पापां नूं दूजे पलड़े विच ते नाम दे तुल ओ पाप ना तुल सके। सात संगत बोलो श्री साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। आख्या साईं दा नाम एटा अमोल है दी कोई कीमत नहीं पा सकता इसनों कोई तोल नहीं सकता। तां ओ राजे जनक दे दरबार विच जिस वेले गुरु नानक दे गुणवान हो रहे सन ते एक रिखी ने आख्या गुरु नानक कलयुग विच आएगा ते क्या राजा जनक जी असी गुरु नानक दे दर्शन कर सकांगे। आख्या क्यों नहीं तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हैं ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब देंदे हैं। जितों कलयुग आवेगा कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा ते रिखी ने आखिया मैनू मैं गुरु नानक नू किवें लब्बांगा। ता राजा जनक कहन लगा तेनू गुरु नानक लभण दी लोड़ नहीं गुरु नानक आपे ही तेनू लभ लेगा। सात संगत बोलो श्री ते जदों फिर समा बदलिया कलयुग दा समा आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज ते जिस वेले संतोख सर जिथे अज पवित्र अमृतसर दी धरती ते संतोख सर दा सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नूं टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओह कई उस मठ नूं जाके लगी ते सिखां ने आके बेनती कीती गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा है उहदे विच कोई रिखी है। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे हाँ एक रिखी है जो राजे जनक दे समें तों साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नूं एक एक इट अपने हाथ नाल हटाई किते रिखी नूं लग ना जा ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उहदा सिर रखिया मुख ते छटे देते जल दे सिर ते हाथ रखिया ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है। तां गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे कलयुग है कलयुग कमिया। रिखी कहण लगा मैनू कलयुग दी तत्ती वाह ना लगे मैनू बचा लो ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कलयुग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां उस निरंकार दे दर्शन करां ते फिर कहण लगा रिखी के कलयुग विच गुरु नानक ने आउणा सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो स्वास तले उतरे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के स्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने हैं। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहण लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। सात संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहण लगा सचमुच
गुरु अर्जन देव ही हरी दा रूप है। ता फिर उस रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरणों में विश्वास छड़ दिते ते फिर जूनिया तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जो भी गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा प्यारी सात संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना दे फिर 84 लाख त्रिगट जूना विच ना आवेगा। ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम आओ प्यार नाल जपिए।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की।